ज्ञानामृत प्रिय पिपास मुनीन्द्र बृंद संसेवनोत्सव समुत्सुक चित्र लीलौ नित्यावतृप्त्यमृत रूप धरौ प्रशान्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये नित्यात्मभाव निरताखिल दास वर्ग संप्रार्थनाभिमत दान गुणैक शीलौ नास्तिक्य रूप विषवृक्ष विनाशक उद्वौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये दिव्यौ मृकण्डु मुनिपुत्र सुदर्शितौ तौ श्रीशौनकादि मुनिवृन्द सदा सुसेव्यौ सर्वोत्तमौ सकल दैव तव

0: डॉक्टर जी फणींद्र गिरिनाथ एमडी पीडियाट्रिक्स,
1: डॉक्टर एस पूर्णचंद एमडी इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट इमरजेंसी क्रिटिकल केयर टीम,
2: डॉक्टर पी प्रवीण एमएस ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर माचवरपु महेश एमबीबीएस डीएनबी एमएस न्यूरो सर्जरी ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, डॉक्टर एन माधुरी एमबीबीएस एमएस एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी।